0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 17 मई पाकिस्तान में इतवार की सुबह आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 169। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और आज की पहली खबर आपके सामने कराची से रखते हैं, जहां से एक और महारानी जो है उनका इंकशाफ हुआ है। आपको याद होगा कि कल आपके सामने खबर भी रखी थी और एक वीडियो भी, जिसमें एफआईए के अहलकारों ने, बल्कि जत्थे ने एक छापा मारा था। कहने को तो वो छापा था लेकिन असल में वो एक हमला था, हल्ला ही बोला था। वो जो उन्होंने हमला किया था उसमें सुनार जो थे उनके मुंह पर थप्पड़ मारे गए थे। मकसद क्या था? मकसद ये बताया गया कि चेक करना था कि उनके पास जो सारा माल है वो असली है, मतलब कानूनी तौर पर है, कस्टम पेड है, सोना कोई ऐसा तो नहीं जो स्मगल्ड है। बिल्कुल ठीक है, कानूनी तौर पर आपका ये हक है, लेकिन कानून हाथ में लेना आपका हक नहीं है। थप्पड़ रसीद करना आपका ये काम नहीं है। वहां पर एक ऑफिसर थी जो इस सारे काम की इंस्ट्रक्शन दे रही थी। अब जब लोगों ने इसके ऊपर लान तान की, जब उसकी वीडियो आई, वो वीडियो आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि फिर यूट्यूब की पॉलिसी में जब तशद्दद होता, थप्पड़ वगैरह दिखाए जाते हैं तो वो उसको ब्लॉक कर देते हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर वो वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। अब जब वो थप्पड़ मारने की इंस्ट्रक्शन इन मोहतरमा ने दी तो सभी ने सर्च करना शुरू किया और लान तान भी किया कि ये कौन है जो थप्पड़ मरवाने के अहकाम दे रही है, लेकिन इनका नाम बाहर नहीं आ रहा था। FIA और पूरा सिस्टम इनके नाम को छुपा रहा था। अब सोशल मीडिया पर इनकी आइडेंटिटी को रिवील किया गया है और पता चला है कि इनका नाम रुबाब काजी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड इनका निकला है और पता चला है कि इनके शौहर जो है उनका नाम आफताब काजी है, वो भी एक ब्यूरोक्रेट है। इनके एक भाई भी ब्यूरोक्रेट हैं जिनका नाम मुनसिफ काजी है। और इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये FIA की ऑफिसर नहीं है, ये असल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये ऑफिसर हैं और वहां से डेपुटेशन पर ये FIA में आई हुई है ना कमाल। और सखर की कोई फैमिली है जहां जिससे ये बिलोंग करती हैं। अब ये जो सारी सूरत हाल जब इमर्ज हुई है तो समझ आती है कि कहां से इन्होंने इतनी ताकत ली जिसकी वजह से इनका नाम महकमे वाले सामने नहीं आने दे रहे थे और इनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा था जो वहां खड़े होकर थप्पड़ मरवा रही थी। अच्छा, ये कोई अनोखा काम नहीं है। आजकल आपने देखा कि खवातीन जो अफसरान हैं उनसे ये काम करवाया जाता है। मुझे नहीं पता ये चौधरी साहब की नई इजाद है या शरीफ खानदान की। आपने देखा है कि पंजाब के अंदर भी मरियम नवाज साहबा ने खुद और अपने इर्द गिर्द खवातीन को इकट्ठा किया है। जो इल्ज़ाम है करप्शन करने के, वो मरियम औरंगजेब के ऊपर सख्त किस्म के इल्ज़ाम लग रहे हैं आजकल। कहा यह जाता है या इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि मरियम नवाज की जगह पर सारी मार धाड़ वो कर रही हैं। अब जाहिर है किसी के पास सबूत तो नहीं है, लोग ये कहते हैं या लोगों का ये तासुर है। उसके बाद ये भी बताया गया कि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है उसके अंदर भी तासुर लोगों का यही है कि बहुत ज़्यादा मार धाड़ हो रही है। अब इस सारी सूरत हाल में अगर आप कोई बात करेंगे तो वो खवातीन होंगी। ऐसे ही चौधरी साहब ने, याद कीजिए 9 मई के जितने भी मुकदमात थे उसमें खवातीन जो पुलिस ऑफिसर थीं उन्हें आगे करके, एक वो मैडम रोलेक्स थी, आप सबको याद होगा, अनूष साहबा जो SP थी उनको आगे किया गया और उन्होंने झूठ बोला कि इररिफ्यूटेबल एविडेंस है उनके पास 9 मई की, और बाद में आपने देखा वो सब झूठ था। अब ये जो तमाम खवातीन अफसरान हैं जहां जहां उनको इस्तेमाल किया गया, उसके बाद आपने एक वो ASP साहबा थी जिनको SP की पोस्टिंग दी हुई थी, मुझे उनका नाम भूल गया, वो भी शायद मोहसिन नकवी साहब की रिलेटिव हैं, उनके भी आपने हाल देख लिए थे जिस तरीके से उन्होंने एक लाहौर के एक सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर को, मेडिकल डॉक्टर को बुला के हरास किया और उन्हें हरास करने के बाद कहा कि फलां शख्स से आपने जो पैसे लिए हैं वो वापस करें, गालिबन आंख की सर्जरी का कोई मामला था। तो मेरा ख्याल शहरबानो उनका नाम है या शेरबानो उनका नाम है, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, शहरबानो है या शेरबानो नकवी या कुछ ऐसा उनका नाम है। अब ये एक नया पाकिस्तान के अंदर, जैसे आपने देखा ना कि नए से नए ट्रेंड हैं, जैसे जब तक ज़ियाउल हक थे तो हमारे जो जर्नल्स थे वो इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आए थे, ये कॉर्नर वाले प्लॉट, ये कमर्शियल प्लॉट, ये मारधाड़ नहीं थी। तब ज़रई ज़मीनों की मारधाड़ होती थी या ये फैक्ट्रियाँ लगती थी जो बड़ी बड़ी फौजी फर्टिलाइज़र, फौजी सीमेंट, उनके अंदर नौकरियाँ वगैरह। लेकिन फिर मुशरफ साहब के जमाने में हमारे जर्नल्स की एंट्री हुई रियल स्टेट के बिजनेस पे, बस फिर क्या, फिर तो हम प्रॉपर्टी डीलर बन गए। तो जैसे हर जो इरा होता है, हर जो आर्मी चीफ होता है या डिक्टेटर होता है, वो कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करवाता है। आसिम मुनीर साहब ने जो नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई है वो है कि खवातीन पुलिस ऑफिस अफसरान को सामने रखो, उन्हें इस्तेमाल करो, उनसे सारा जुल्म करवाओ, और अगर कोई उनके ऊपर बात करेगा तो फौरन औरत कार्ड निकल आएगा। अब ये जो रुबाब काजी साहब हैं, इनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हुई है लोगों के सामने, देखते हैं इनके खिलाफ। वैसे एक्शन तो कोई नहीं होना, जाहिर है क्या होना है, यहाँ पर तो लोगों को मार दिया जाता है। जब वीगो डाले आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ला के लोगों को उठाएंगे और मारदाट करेंगे, और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए सीसीडी वाले लोगों के जाली पुलिस मुकाबले करेंगे, तो फिर आवे का आवा बिगड़ जाता है। एफआईए वाले कहते हैं दो थप्पड़ हमने भी मार दिए तो क्या हुआ। कल ही की वीडियो है, एयरपोर्ट के ऊपर एक खातून जो सफर कर रही थी, उन्होंने कस्टम या गालिबन इन्हीं की एफआईए की खातून जहां नौकरी कर रही थी वहां कोई एहलकार, उनसे जाके पैसेंजर खातून ने कहा कि बाथरूम में कोई टिश्यू पेपर नहीं है शायद, तो मुझे टिश्यू पेपर दे दीजिए। उसके ऊपर उन्होंने उसको थप्पड़ रिसीव कर दिया कि मैं आपको टिश्यू पेपर देने वाली लगती हूं, और वहां पर एक रेसलिंग जैसी लड़ाई हुई, उसकी वीडियो भी सामने आई। लेकिन चंद दिन पुरानी बात है जब इकरारुल हसन एयरपोर्ट के ऊपर गालियां दे रहे थे, आप सबने वो सब कुछ देखा, लेकिन क्योंकि पता था कि उनके पीछे चौधरी खड़ा है, उनको किसी ने हाथ नहीं लगाया। तो लगता यही है कि रुबाब काजी साहब ने पहले इलेक्शन कमीशन के अंदर दबा के चौधरी साहब के अहकाम बजा लाई हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल डॉक्टर अनम फातिमा, आप सबको पता है इस्लामाबाद के अंदर उनके पास चार ओहदे हैं, एक नहीं है, चार चार ओहदे हैं, और वो भी ज़बरदस्ती लोगों के घर खाली करवा रही हैं, लोगों के ऊपर इसी तरीके से तशद्दुद और बाकी सख्ती करने का उनकी तरफ से भी ऐसी ही इंफॉर्मेशन आ रही है। साथ साथ याद कीजिए ये भी पता चल रहा है कि वो असिस्टेंट कमिश्नर थी गुजरांवाला के अंदर, जब आर्मी चीफ आज के और उस वक्त के कोर कमांडर गुजरांवाला आसिम मुनीर वहां पर कोर कमांडर थे। तो इस तरह से हैंडपिक किया जाता है जो ब्यूरोक्रेसी के अफसरान हैं उनको, और फिर उनसे जैसे भी काम करवाने होते हैं वो करवाए जाते हैं और वो करते हैं, और अगर खवातीन वो काम करें तो फिर ज़्यादा, बल्कि उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है, क्योंकि कोई तनकीद भी नहीं कर सकता। अब आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ शाज़ेब जलानी साहब ने डॉन न्यूज़ के ऊपर बात करते हुए ये बताया है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में सिर्फ 70 बच्चे पास हुए हैं, हज़ारों बच्चे फेल हुए हैं, हजारों बच्चों ने एग्जाम दिए, सिर्फ 70 बच्चे पास हुए हैं, और ये जो 70 बच्चे हैं ये सियासतदानों के, ब्यूरोक्रेट्स के और बड़े लोगों के बच्चे हैं, इनमें आम लोगों के बच्चे उस तादाद में नहीं है। वो कहते हैं कि मेरिट को उड़ा के रख दिया है, अंधेर नगरी है, ना अदलिया के अंदर को मेरिट है, ना किसी और इदारे के अंदर रह गया, ना अदलिया को फिक्र है। अब जब इन्हीं लोगों के बच्चे आके सिविल सर्विसेज में आगे ब्यूरोक्रेट बनेंगे तो फिर आप खुद ही सोच सकते हैं कि आगे मामला जो हैं वो किस तरफ लेकर जाया जाएगा। अगली खबर आपके पास सामने रखते हैं, आईएमएफ से रिलेटेड है। शहबाज राणा ये कहते हैं कि आईएमएफ ने जो हमारा अगला बजट है वो 2665 अरब का दिया है, ये वाला जो बजट आ रहा है वो 2560 अरब का है, और उन्होंने कहा है कि 101 अरब का इजाफा किया गया है हमारे डिफेंस बजट में। मीन आईएमएफ ने इजाज़त दे दी है पाकिस्तान को कि आप डिफेंस बजट में 101 अरब का इजाफा कर लें। अच्छा, अब जो फसी मंगी हैं, वैसे तो ये ब्लूमबर्ग में लिखते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी अक्सर चौधरी साहब के हक में ही लिखते हैं, मतलब है तो ब्लूमबर्ग आला इदारा। आपने ये भी जहन में रखना है कि ये जो बड़े बड़े इदारे हैं, मसलन न्यूयॉर्क टाइम्स के, इससे पहले गालिबन उनका नाम सलमान था कि क्या था मुझे याद नहीं, अब जो उनके क्रॉस्पॉन्डेंट थे पाकिस्तान के लिए वो अंदर से पूरे के पूरे पटवारी थे। वो खबरें तो न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखते थे लेकिन आप ऐसे ही समझें कि कोई पटवारी लिखता था। अब लोग ये समझते थे कि न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है तो ये अथेंटिक ही होगी, लेकिन क्योंकि एक पटवारी उस खबर को फाइल करता था या पटवारी नमाज जो उनका तासर था कि वो एक पटवारी हैं, तो अक्सर न्यूयॉर्क टाइम्स की जो स्टोरीज होती थी वो वन साइडेड होती थी या उनके अंदर जो पूरा कॉन्टेक्स्ट होता था किसी चीज़ का वो नहीं होता था, बल्कि एक प्रीटेक्स्ट के ऊपर, एक अपनी सोची समझी जाली कहानी के ऊपर अक्सर कहानियाँ जो हैं वो बिल्ड करके शाया कर दी जाती थी। ऐसी सूरतयाल फसी मंगी साहब भी अक्सर करते हैं ब्लूमबर्ग के अंदर, वो भी प्रो फील्ड मार्शल, प्रो पाकिस्तानी मिलिट्री, प्रो जो मिलिट्री जर्नल्स की मैं बात कर रहा हूँ जो उनके इंटरेस्ट है, और प्रो पीएमएलएन अक्सर स्टोरीज फाइल करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हैज़ गिवन अ रेवेन्यू टारगेट, IMF ने पाकिस्तान को अब नया जो रेवेन्यू टारगेट है वो 61.3 बिलियन डॉलर का दिया है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने पेट्रोलियम के ऊपर, सिर्फ पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स लेना है वो 1.73 खरब, तकरीबन 2 खरब रुपया या 2.25 खरब रुपया जो है वो आपने अगले साल पेट्रोलियम के ऊपर जो है वो टैक्स देना है। इस साल से दुगना आप कह लीजिए, इसका मतलब यह है कि आप तेल की कीमतें अगर इस साल से आपने दुगना टैक्स देना है तो खुद ही जरब और तकसीम दे लीजिए कि आपने कितना ज्यादा महंगा तेल अगले सालों में खरीदना है। वो कहते हैं कि सिर्फ पेट्रोलियम के ऊपर जो आपको लेवी और टैक्स देने पड़ेंगे वो अब 18 बिलियन डॉलर के देने पड़ेंगे अगले साल में। इससे लग ही रहा है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई का एक तूफान आ रहा है, मतलब तूफान तो पहले ही है, अब आपने उसका लफ्ज इस्तेमाल करना है कि आगे क्या आ रहा है। जो अभी है उसको भूल जाइए, क्योंकि ये जो फसी मंगी साहब ने ब्लूमबर्ग में खबर, मैंने ये बताया कि ये अमूमी तौर पर प्रो मिलिट्री जर्नल्स खबर लगाते हैं, नून लीग के प्रो खबर लगाते हैं, और अगर ये कह रहे हैं कि दुगना तकरीबन जो है वो अगली दफा पेट्रोलियम के ऊपर हुकूमत ने टैक्स लेना IMF के साथ ये तय हुआ है, तो फिर आप कानों को हाथ लगा लें, आप खुद ही सोच लीजिए कि पाकिस्तान में महंगाई जो है वो तमाम कसरे और वट जो है वो निकाल के रख देगी, और मुझे नहीं पता कि लोग इसको कैसे बर्दाश्त करेंगे और कैसे अफोर्ड करके आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ शहबाज राणा की भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो काम करने वाले, जिन लोगों को काम चाहिए, कुछ के पास नौकरी है और कुछ को चाहिए, जो काम करने वाले लोग हैं, मतलब जिनमें कुछ के पास नौकरी है और कुछ को चाहिए, उन तमाम की तादाद 13 करोड़ है, और इसके लिए अगर आपने इन तमाम लोगों को नौकरियां देनी है तो 7% कम अज कम ग्रोथ रेट होना चाहिए, तो तब जाके आप 13 करोड़ लोग जिन्हें नौकरियां चाहिए उनको नौकरियां दे सकते हैं। वो कहते हैं 2050 तक ये जो 13 करोड़ लोगों को नौकरियां इस वक्त चाहिए ये डबल हो जाएगा, 25 करोड़ लोग होंगे पाकिस्तान में ऐसे जिन्हें नौकरियां चाहिए होंगी। अगर हमने उन तमाम लोगों को रोजगार देना है तो अगले 24 सालों के अंदर, आप ये समझ लीजिए, जो कि आप कोई बहुत लंबी बात नहीं है, हमें हर साल 7% के ऊपर ग्रोथ रेट अपना रखना पड़ेगा। इमरान खान की हुकूमत में 6% प्लस का ग्रोथ रेट था, जिसको माइनस में लाके खड़ा कर दिया, मीन प्लस में भी नहीं रहने दिया, पहले 2 साल तो इन्होंने माइनस में रखा, और ये हमारे मिलिट्री जर्नल्स का कारनामा है। लेकिन जैसे पाकिस्तान तोड़ने का किसी ने, जो उसका वजन था वो आज तक नहीं उठाया, उसकी जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की, इस तबाही की भी जिम्मेदारी जो है वो कोई कबूल करने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसकी टोपी उसके सर होगी, उसकी टोपी उसके सर होगी, ये कोई मानेगा नहीं कि ये हमारी वजह से हुआ है। फिर उसके बाद गुज़श्ता 2 साल में कोई 49 खरब का इस्तस्ना बड़ी कंपनियों को दिया गया है। इस्तस्ना एक तो फील्ड मार्शल को मिला हुआ है, आसिफ अली जरदारी को मिला हुआ है, इस्तस्ना होता है कोई पूछगिछ नहीं या रायत। तो 49 खरब, ये पिछले दिनों अखबार की गालिबन डॉन की भी स्टोरी थी। तो ये जो 49 मतलब 50 ट्रिलियन रुपीज, ये छोटी अमाउंट नहीं है, 50 ट्रिलियन की जो इस्तस्ना दी गई है ये बड़ी बड़ी कंपनीज को दी गई है, और वो कंपनीज इन्हीं की हैं, जैसे शुगर माफिया को दी जाती है, फर्टिलाइजर को दी जाती है, या वो चौधरी की कंपनीज हैं, या वो बड़े बड़े फ्यूडल्स की, या बड़े बड़े बिजनेसमैनों के वो काम हैं, या सियासतदानों के हैं, मतलब पाकिस्तान की अशराफिया 50 खरब की सब्सिडी खा गई है, 50 खरब का इस्तस्ना खा गई है, गरीब को कुछ नहीं मिला, जो उसके पास हेल्थ कार्ड था वो भी उससे छीन लिया है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जब आपके सामने हम ये बताते हैं, तो ये चंद गरीब लोग हैं जिनकी सूरत हाल है, कोई अंगूठी बेच रहा है, तो कोई रिक्शे वाला कह रहा है कि मेरा कुछ पूरा नहीं हुआ, तो कोई और कहानी सुना रहा है। ये 2-3 लोगों की छोटी छोटी कहानियां सुनिए कि इस वक्त गुर्बत से लोग कितने तंग हैं और किन हालात में पहुंचे हुए हैं, फिर आगे चल के आपको ये जो अशराफिया है इनके हालात दिखाते हैं। ये जरा कुछ गरीबों की, क्योंकि इनकी आवाज़ हमेशा दब जाती है, इनको कवरेज नहीं मिलती, इनकी बात कोई आगे पहुंचाने वाला नहीं होता, इनके ऊपर कोई सर्च लाइट नहीं डालता कि इनको मेन स्ट्रीम के अंदर ला के डिस्कस किया जाए, तो इनकी बात जरा सुनिए।
2: इमरान खान सही क्या किया था, मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, आप लोग नहीं कर सकते हैं।
3: बर्दाश्त हो रहे
2: नहीं हो रहा ना, आप बर्दाश्त
3: कब तक बर्दाश्त, इस हालत में रहेंगे,
2: बस
3: कर भी रहे हो भी नहीं रहा।
2: मार दिया हुआ इन्होंने, हमें मार दिया हुआ है, हमारे
3: ये बिजली का बिल आप देने के लिए
4: अंगूठी बेचने आए
3: हो? अंगूठी बेचने आए
5: और भी अखरा जाते हैं घर के, मेहनत करने आते, काम ही नहीं है मार्केटों में, फारिग बैठे हुए हम तो।
6: कल 15 तारीख है, यकीन जानो 12,000 का किराया, खुदा की कसम नहीं है, परेशान हो गए, इस महीने का किराया नहीं निकला, इतना परेशान। ये देखो मेरे पास, ये मैं घर से प्याज का मसाला बना के लेके आया हूँ, 2 टाइम मैंने खाया है। पहले मैं होटल से रोटी खा लिया करता था तो 150-200-150 रुपये मैं खर्च कर लिया करता था। काफी दिनों से ये प्याज का मसाला है, इसके साथ मेरे एक एक नान लेके खाया है।
7: बस ये क्या 804, ये क्या चक्कर है
8: 804? इससे तकलीफ बड़े लोगों को होगी, मैं इसलिए बताना नहीं चाहता। चोर डाला हुआ है जी, महंगाई नहीं है, 2000 माल है, और 2000 मैं इंचार्ज हूँ फैसलाबाद स्टैंड पे, मेरा नहीं बन रहा, ये लोग कह रहे हमारा बन रहा है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा।
2: और गरीब आदमी रोटी से आजिज हो गया है, पानी से आजिज हो गया है, बिजली वो नहीं मिल रही, गैस वो नहीं मिल रही, 500 रुपए किलो अब ये नया लेवी लगाने लगे हैं।
7: आपने 2000 का कमाया है,
2: 2000 ये 300 रुपया कमाया हुआ है, कौन कहता है, झूठ बोली जाती है जितने मर्जी है, देखे इन्होंने तो घर की रोटियां छीन ली है।
7: लेकिन अब महंगाई तो कंट्रोल की है इन्होंने।
2: कौन सी महंगाई कंट्रोल की है, आलू 40 रुपए किलो हो गए हैं, 20 रुपए किलो बिक रहे थे रमजान में, करेले 250 रुपए किलो है, छोटा गोश्त 3500 रुपए किलो है, ये महंगाई कंट्रोल है? हम लोग तो चलो मजदूरी कर रहे हैं, कभी खा ली कभी ना खाई, गुजारा कर लेते हैं।
7: 216 रुपए टैक्स है पेट्रोल में, टैक्स 212 रुपए, सॉरी 212 रुपए टैक्स है। इमरान खान के दौर में 150 रुपए पेट्रोल था, 150 रुपए पेट्रोल था तो
9: बेरा घर है की इमरान खान ने
7: बेरा कर के ना नहीं किया है जो 40 साल पहले तो फिर आ गए।
2: महंगाई तो इस दौर में हुई है ना, हम तो खुद नून लीग के।
7: अच्छा तानू नहीं तानू कोई तब से बीमार हो जाओगे, किसे जाओगे
9: हॉस्पिटल
7: के रे, लंदन वाले पाकिस्तान वाले? ये मेरे भाई 3 दिन स्ट्रेचर पे रहे हैं और मुझे कह रहे हैं 1000 रुपया दे दो हम आपको बेड दे देते हैं। मेरे 1 महीने से मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, 1 महीने 21-22 दिन हो गए, मैं आपको कॉल दिखाता हूँ, स्कूल से कॉल आई है तो मेरे घर में बिजली नहीं है, पंखे बंद है, मैं कैसे अपने घर में रहूँ, मेरा मीटर उतरा हुआ है, मैं कैसे रहूँ? आज 22वां दिन है, स्कूल से मैडम का फोन आ गया, मैंने कहा मैडम मम्मी ने भी तब भेज सकता, ये मैं शुगर का मरीज हो गया हूँ। आप कह रहे हैं ना 1 पैसा इन्होंने बिजली सस्ती की है, ये 20 से 22 रुपए की गोली है, मैं पूरा महीना बिजली एक पैसा बचाऊं तो एक गोली नहीं आनी इसकी।
1: सुन ली आपने, तो ये सूरत हाल है इस वक्त गरीब की इस मुल्क के अंदर। लेकिन आगे सुनिएगा, डॉक्टर इशरत हुसैन ने कहा है कि FBR के अंदर 100 ऐसे अफसरान हैं, जी हाँ 100 ऐसे अफसरान हैं जिनकी टोटल मालियत जो है वो $100 मिलियन से ज्यादा है। इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी सराइयत की हुई है। ऊपर हमने आपको बताया कि 50 खरब 50 ट्रिलियन प्रिसाइजली 49 ट्रिलियन जो है वो सब्सिडी ले गई अशराफिया, तो 7 FBR के अफसरान की हालत भी देख लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा कि यहां पर हो क्या रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपके सामने हम सूरतयाल रखें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये एक वीडियो देखिए, ये वो वीडियो है जो एक फौजी अफसर हैं या उनके कोई साहबजादे हैं उन्होंने लगाई है, दिखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि ये कोई आर्मी के ऑफिसर हैं, इन्होंने जो वीडियो लगाई उस पर जाहिर है वो डिफरेंट किस्म की जो अयाशियाँ उनको करने को मिल रही हैं फौजी सेटअप के अंदर वो दिखा रहे हैं, जिसमें गोल्फ क्लब्स हैं, जिसमें बाकी बहुत सारा ऐसा सूरत हाल है। लेकिन इसके पीछे जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो यो हनी सिंह का गाना लगाया हुआ है जो हम आपको कॉपीराइट्स की वजह से नहीं सुना सकेंगे, लेकिन ये गाना आपको बता देते हैं अगर आप सर्च करके देखना चाहें उसके जो कुछ बोल हैं, पूरे तो नहीं बोल सकता, लेकिन वो कहता है कि आई एम मदर, आगे एफ वर्ड है, मिलियनर, डर्टी मनी सुपर पावर्स, पुल अप लाइक अ शेख, शोफर्ड कार्स, टेलर्ड सूट्स। तो ये अयाशी, ये ब्रैग, ये शेखी बखेर रहे हैं ये मिलिट्री के अफसर जो अपना लाइफस्टाइल, लग्जरी प्रोटोकॉल, एलीट क्लब्स, एक्सपेंसिव कार्स, डिजाइनर क्लोथ्स और ये सब कुछ डिस्प्ले कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें फील्ड मार्शल भी और DGISPR भी बताते हैं कि ये गरीब की रिप्रेजेंटेटिव फौज है। वो हमें ये बताते हैं कि ये अल्लाह की फौज है, गरीब की रिप्रेजेंटेटिव है, इसमें कोई शक नहीं, जो आम फौजी है वो तो ऐसा ही है, लेकिन ये जो बड़े बड़े जर्नल्स हैं, इनकी जो औलादे हैं और जिस तरह के ये वीडियोस, ये हमने कहीं से खुद नहीं प्रोड्यूस की, ये उन्हीं की वीडियो है, ये इस वक्त पड़ी हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, जाकर देख लीजिए। ये जो गाने के आपके सामने बोल रखे हैं जो मैं पूरे रख नहीं सकता, जिसमें गाली गलौज है, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से वो वीडियो भी लगी हुई है, एक तरफ अशराफिया, दूसरी तरफ आपको लगेगा कि सिर्फ ये फौजी अफसरान करते हैं, नहीं, अशराफिया का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। ये आगे देख लीजिए, ये एक ब्यूरोक्रेट है कोई, ये भाग रहे हैं, साथ इनकी छोटी बेटी नन्नी सी जो हमारी भी बेटी की तरह है, अल्लाह इसकी किस्मत अच्छी करे, ये बच्ची भाग रही है। लेकिन पीछे गौर कीजिए, اب اس بیٹی کو کیا سکھا رہا ہے باپ کہ یہ جو قوم کا اس وقت پیٹرول جلانا ہے. یہ ویڈیو چند مہینے پرانی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں کہ آج کی ہے. تو ڈسکلیمر یہ کہ چند مہینے پرانی ویڈیو ہے, لیکن آپ کو صرف بے حسی دکھا رہے ہیں کہ پیچھے ذرا گاڑیاں اور پروٹوکول دیکھیے, وہ ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہے اور یہ باپ بیٹی بھاگ رہے ہیں. کتنا عوام کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں اور اس کے اندر کتنے سیکیورٹی کے لوگ بیٹھے ہیں. یہ بچی تو پھر انٹائٹل ہوگی نا, جیسے مریم نواز اپنے آپ کو انٹائٹل فیل کرتی ہے اور اس نے 1300 کروڑ کا جہاز لے لیا اور اس کو لگا ہی نہیں کہ میں کچھ غلط کر رہی ہوں. یہ بچی بھی کل کو کچھ بھی کرے گی, وہ ہو سکتا ہے رباب کاظمی کی طرح, رباب قاضی کی طرح لوگوں کے منہ پر تھپڑ رسید کروائے یا کچھ بھی کرے. تو ایسے اشرافیہ اپنے بچوں کو انٹائٹلمنٹ فیل کرواتے ہیں اور ان کی ٹریننگ کرتے ہیں کہ آپ لوگ انٹائٹل ہیں. آگے چلتے ہیں, اب اشرافیہ کی بات. اب جہاں تعلیم کی کمی ہے, جہاں پر نیا نیا پیسہ آیا ہے, وہ بھلے بےچارے لوور مڈل کلاس والے ہوں, شکل سے لگتی ہے ہماری بہن کوئی ایسی ہو سکتا ہے, شکل مین میں ان کی ظاہری شکل کی بات نہیں کر رہا, جو اوور آل اپیئرنس ہے اس سے لگ رہا ہے کہ کوئی لوور مڈل کلاس سے یا تو پیسے آ گئے ہیں پہلی دفعہ یا کوئی اور معاملہ ہے. ان کی ذرا حالت چیک کیجیے, انہوں نے بھی چھوٹی بچی ساتھ بٹھائی ہوئی ہے. ہم ساری عمر یہی پڑھتے سنتے رہے کہ مجروں میں جو طوائفیں ہوتی تھیں ان کے اوپر پیسے پھینکے جاتے تھے. اب یہ نیا رواج آ گیا ہے, چھوٹے بچوں کے اوپر پیسے پھینکے جاتے ہیں, اپنے گھر کی عورتوں کے اوپر پھینکے جاتے ہیں, ماؤں کے اوپر اور بہنوں کے اوپر پیسے پھینکے جاتے ہیں. اب یہ جو بھی کوئی خاتون ہے, میں یہی کہہ سکتا ہوں تعلیم کی کمی ہے انہیں, یہ اس بچی کے سر کو پہلے پیسے لگا رہی ہیں, یہ سر کو لگائے جاتے ہیں صدقے کے لیے غالباً. اب مجھے سمجھ نہیں کہ یہاں آگے صدقہ لینے والا کون ہے جو آپ اپنی بچی کے سر کو لگا کے صدقہ دے رہی ہیں, اور پھر وہ جو سنگر ہیں ان کے سر کو بھی لگا رہی ہیں, وہ جو بیٹھی گا رہی ہیں آگے سنگر ان کے سر کو بھی لگا رہی ہیں, اپنی بچی کے بھی لگا رہی ہیں پھر سنگر کے سر کو بھی لگا رہی ہیں, اور بالکل جاہلوں کی طرح وہ پیسے پھینک رہی ہیں. اب انہیں کچھ نہیں پتا کہ یہ ٹھیک کر رہی ہیں یا غلط کر رہی ہیں, انہوں نے ریلز میں یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ بھی کر رہی ہیں. جو کچھ انہوں نے ریلز میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے وہ بھی کر رہی ہیں, اور انہیں لگتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے اور یہی ذرا فیشن میں ان ہے, اور میں بڑی یو لگوں گی, بالکل یو ہنی سنگھ کی طرح کی یا ان کے گانوں کی طرح کی, میں بالکل بڑی یو لگوں گی اس لیے مجھے یہ کرنا چاہیے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کو سمجھ بھی آئے گی جو بات ہم سمجھا رہے ہیں, کیونکہ وہاں شعور کی واقعی بہت کمی لگتی ہے. یہ جو خاتون ہیں بیچاری جو کر رہی ہیں, تعلیم کی اور شعور کی خاصی کمی لگتی ہے, لیکن یہ بھی آج کل کام جو ہے وہ عام ہوا ہوا ہے. دوسری طرف آپ کو ہم نے غربا کی کچھ باتیں سنوائی تھیں, اس سے آپ خود سمجھ لیجئے کہ پاکستان میں یہ کتنا بڑا ایک ڈفرنس ہے. ساتھ ہی حکومت کا فیصلہ دیکھ لیجئے, انہوں نے جو جیٹ فیول ہے وہ سستا کر دیا ہے اور اس کی قیمت 111.44 روپے فی لیٹر کم کر کے نئی قیمت 320.32 روپے.
4: آپ اور ہم وطن ایک سنگ, نئے رنگ نئی امنگ. ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 3321-2984, ای میل ریڈیو سنیپ لائن

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 3321 2984। ईमेल रेडियो स्नैपलाई

0: कनाडा में, अमेरिका में आप लोग थोड़ा सा अपना किबला दुरुस्त करें, और ये जो एक्सट्रीमिस्ट आपके सफ़ों में पाए जाते हैं, इनको शट अप कॉल दें और इनको बताएं कि तुम्हारा जाती मसला है, वी आर प्रिपेयर टू लिव अप टू योर प्रॉब्लम, लेकिन डोंट डिफाइन आर सेल्स अलॉन्ग विद यू, हमें अपने साथ मिला के मत डिस्क्राइब करो कि ये नेसेसरीली इस्लाम है, ये तुम्हारी इंटरप्रिटेशन है, ये तुम्हारा देखने का तरीका और तुम्हारा समझने का तरीका है, जिस तरह से अफगान तालिबान का है। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती, थैंक यू।
1: आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 3321 2984, ईमेल रेडियो स्नैपलाई हम